0: पाँच बजे
1: हजुर को रेडियो 102.1 मेगा
2: को कविता सहित वनजन्तु फोटोग्राफर टासी आर घलेका अनुभव र हिउँचितुवा सहित वनजन्तु संरक्षण शिक्षाको आवश्यकता बारेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट एवं सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यसँगको कुराकानी सुन्नेछौं।

हजुर को आवाज हजुर को साथी हो हजुर को रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज नमस्कार हजुर को रेडियो 102